0: तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो साइलेंस 89.8 मेगाहर्ट्ज।
1: सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टिप्स ऑफिशियल।

0: अगर आपको ये भक्ति से भरा हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिव्य भजन और मंत्र सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी सुंदर भक्ति कॉन्टेंट बनाने की प्रेरणा देता है।
1: रेडियो स्पाइनो 89.8 मेगाहर्ट्ज तपाईं हाम्रो अटुट साइनो।